शुभ प्रभात दोस्तों, और आप सबको शांति दिवस के इस शुभ अवसर पर शुभकामनाएं मेरी ओर से। दोस्तों, जैसे कि आपकी आरजी मोनप्री 100.7 एफएम जो ओ में आप सबके साथ मीठे मीठे खूबसूरत गीतों के साथ आई हूं। और आज का दिन जैसे कि क्या है, हॉलीडे है ना दोस्तों, छुट्टी है आज। रिमनी जिसे मिजो भाषा में बोला जाता है, शांति दिवस है। यह दिन हर साल 30 जून को मिजोरम में एक आधिकारिक राज्य अवकाश के रूप में मनाया जाता है। ये मैं आप सबको पहले बताना चाहती हूँ। यह दिन जो है 1986 में हुए ऐतिहासिक मिजो शांति समझौता, ये मिजो एकॉर्ड है, पीस एकॉर्ड, ठीक है ना, पर हस्ताक्षर करने की याद दिलाता है हमें। और इस समझौते ने मिजोरम में लगभग 2 दशकों यानी कि 20 साल तक चले उग्रवाद और अशांति को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया था, ठीक है ना दोस्तों। इसे राज्य भर में, विशेष रूप से राजधानी आइजोल में जहां हम रह रहे हैं, शांति, विकास और एकता के संदेश के साथ उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। सर, आज का दिन आप सबके लिए भी शुभ हो, ये मेरी कामना है दोस्तों। और जाना चाहूंगी गीत की ओर तुरंत ही। हम और आप मिलकर के क्या है, गीतों का आनंद लेते रहेंगे। सबसे पहले गीत के तौर पे ये रहा आप सबके लिए, सनम की आवाज में हम सुनेंगे लग जा गले, ये रहा।

0: ORS le zingki naupang ko chalaw te andam le vat thay naan le taksatsak na anlaw nei thay naan Dr. Tipon Cha anti berani. Naupangin ko chalaw ane ivele ORS le duiri lamzi tamthay ang birpek ngal vat tur ko chalaw are ma ORS pek chun zom ring tur. Ko chalaw hiyan taksa at duiri lhaw na dehydration akhen thay dehydration inailaw naan ORS le zingki ay vat ton niya.
1: दोस्तों मैं जानना चाहूंगी अब आपके एसएमएस की और यहाँ एसएमएस आया है जिल जाम की ओर से. इन्होंने कहा है हेलो आरजे माम मनपुरी नमस्ते सुप्रभात कहा है. आपको भी सुप्रभात. बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ जिल जाम जो है तुरंत एसएमएस दे करके हमारा दिन शुभ कर दिया है. इन्होंने विन ड्यूटी नाम ओ इप्ले लिस्ट मी जो सो खाई ड्यूटी पुईने इन तान ले आरजे वी एली मई लविन रंतिया आरजे वी एली खजकन मई थे लवांग ओ के पन मई के दूलो श्रेम श्रेम चुवान चुवान अतान सियाल वुम थू रिन कन ति लेंगा चन जेल जा मा इतान पो चुत्यांग बो किन नि से चन सुप्रभात नमस्ते मिनोन ति आहे नंग पो निलेन नोम ति इन शुभकामना करन पे चे नि चो चलना चा होंगे अगले गीत के और अगला गीत ये रहा दोस्तों देखते हैं जाते जाते फूल कलिए फाल्गुनी पाठक की आवाज में हम सुनेंगे आप सबके लिए.

0: Mizoram Rural Bank chuan inchu ko ma khuwa ngai tua tak zet ani sarkar lai pui social security schemes tlom le rin tlak mang te hian invenim na nei ve ro le PMJJBY life insurance PMSBY accidental insurance chu mai ba ka APY mang hian u pathuna thatin a pension lu tak tu recall thei bokang bank account inei chuan atok mai Mizoram Rural Bank branch inei ber tlo la he him scheme te hi lo zom ve ta che venim na voina Naktu ka taan chung ka him na.
1: दोस्तों इसी तरह से हम अगले गीत की ओर जाएंगे. अगला गीत हमारा रहेगा यहाँ माही वे गीत जो है स्मिता की आवाज में हम सुनेंगे आप सबके लिए मेरी ओर से.

0: ORS le singki subcenter naibira athlonin alakthia nopang kothalo chu ni sompali chuang zing pek turania kothalo are hnu po in ni sompali chuang zing pek nge nge turani nopang kothalo ta na ORS le zing pek hi treatment him ania kothalo atidam chakani nopang note nute nilai kothalo te chu ei tur nute pek thul lo tur andam lo lai le tam hnu po in thataka ei tur pek zel turani nu in nau cho asiam do nemo nau cho ashai do nemo nau ek ati fai nemo sa bona fai taka kutsil sel turani pothalawa wanga taksa in tui tlak cham lo nan awareness le zing te pat chinang che pothalawa laka ilo film the nan finally thiam min na ngai pui mo la ifa te kharu an kin thengin nu hu te chau pela tui thiang him chau in tir thin pa ka vaccine bun taka lak te chinang che
1: दोस्तों मैं कहना चाहूंगी क्या फर्क पड़ता है हमारे पास कितने लाख हैं पैसे हैं करोड़ है कितने घर है और कितनी गाड़ियां हैं है ना सबको खाना तो एक दिन की एक दिन एक एक दिन पे हमें दो थालियां चाहिए है ना दोस्तों या एक वक्त की रोटी दो ही रोटी होती है जीना तो बस एक ही को एक ही जिंदगी है ये सब तो हम जानते हैं फर्क इस बात से पड़ता है कितने पल हम अपने आप का खुशी से पल को बिताते हैं और कितने लोगों को हमारी वजह से खुशी प्राप्त हुई है ये सवाल जो है हम अपने आप पे करते हैं हर पल यानी कि खुशी से हम किस तरह से बिताते हैं या ज्यादा से ज्यादा पल हमारे लिए दुखी का समय आ जाता है ये सोचना बहुत जरूरी है और साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगी सबसे बड़ी बात तो यह है और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हमारी वजह से कितने लोगों को और हमारे इर्द गिर्द के हमारे आसपास के लोगों को खुशी मिली है क्या हम दूसरों की खुशी की वजह है या नहीं यानी कि दूसरों के लिए हम वरदान है या नहीं दूसरों के लिए हम भलाई करते हैं या नहीं ये सोचना बहुत जरूरी है इसीलिए जिंदगी को खुशी से बिताने के लिए प्रेम की भावना या प्यार की भावना जो है हर जगह हम सबको फैलाना बहुत बहुत जरूरी है चलना चाहूंगी अगले गीत की ओर अगला गीत ये रहा आप सबके लिए दोस्तों

0: mishing chuwa phi spon sagania borua khip suak tur duarni mase mechen kha chuan bidi le mezil khu an hip chuwa tir thungni mezia zu thang ho hi atlang puin kum khata mei khu an hip lu za chu donila cancer nana thlem tu tar atam hle ni hei hi nan na khir khan tak pe thei tu che ni inale the ni velo bansanro
1: ram ipuita tan ministry of health and family welfare government of india bol se ni
2: वाकई में धूम्रपान का सेवन करना बहुत ही हानिकारक होता है दोस्तों. मिजो भाषा में हमने अभी अभी सुना था, इसे छुटकारा पाने की कोशिश करना बहुत बहुत ज़रूरी है, जो इस पर फिदा है. ठीक है ना दोस्तों, धूम्रपान जो है हानिकारक है हमारे सेहत के लिए, हमारे शरीर के लिए. मैं कहना चाहूँगी कि जिंदगी में ना सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, अगर हम ऐसे सवाल करेंगे अपने आप को तो बहुत सारे उत्तर मिल सकते हैं.

0: कोई कहेगा कि पैसा सब कुछ है, कोई कहेगा कि भगवान पर आस्था रखना सबसे महत्वपूर्ण है, और कोई शायद कहेगा कि नहीं, प्यार ही सबसे बड़ी बात है। मैं कहना चाहूंगी, हम इस दुनिया में हैं तो हमारे सृष्टिकर्ता के कारण। हाँ, भगवान ही हमारा सब कुछ है, ईश्वर हमारा सब कुछ है। साथ ही साथ जीते जी हम यहाँ जब जी रहे हैं, हमारा जब तक जीवन है तब तक पैसे के बिना भी हम नहीं जी सकते। लेकिन जो लोग कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, वे गलत हैं। ठीक है दोस्तों, संसार में माया मोह के पीछे भाग करके जब पैसे के पीछे हम भागते हैं तो मान मर्यादा भी खो जाते हैं। मान मर्यादा को खोने का ये सबसे क्या है, अच्छा कारण है। सो पैसे के पीछे भागना जो है बहुत हानिकारक है। पैसे के बिना तो हम जी नहीं सकते, लेकिन हमें ये समझ लेना चाहिए कि पैसा सब कुछ नहीं है। मान मर्यादा और विश्वास लोग हम पर कर सकें, इस तरह से हम अगर जिएंगे तो हम ईश्वर पर आस्था सबसे पहले रखेंगे, तो गलत काम करने की बात तो हम सोच ही नहीं पाएंगे ना। और हाँ, जो लोग कहते हैं प्रेम ही सब कुछ है, वो भी ठीक है, क्योंकि प्रेम जो है ना, प्यार जो है ना, इसे तो हमें फैलाना है। लेकिन उसको भी गलत तौर से अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो गलत हो जाता है। किस भावना से? एक भाई बहन का प्यार होता है, माता पिता का प्यार होता है, स्नेह होता है, ममता होती है, और हम सबको एक ऐसा प्यार, इंसानियत, हमारे इंसानियत के तौर पे भी हमारे ही यानी कि को जो मेंबर्स है ना इस जगत पे, उन सब के साथ प्यार की भावना तो रखना चाहिए ही चाहिए। और सबके लिए हम एक विश्वास का पात्र अगर बन जाएंगे तो जिंदगी सफल बन जाएंगे। दोस्तों, मेहनत भी बहुत जरूरी है। कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन फिलहाल चलते हैं गीत की ओर। ये गीत जो है आप सबके लिए दिल तो दिल है।
1: Sometimes.

0: दोस्तों, मैं कहना चाहूँगी, एक बार यानी कि हमारे लेट राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने कहा था, एक कब्र पर लिखा था, किसी को क्या इल्ज़ाम दूँ। दोस्तों, ज़िंदगी पे सताने वाले भी अपने थे और दफनाने वाले भी अपने थे। आप समझ गए होंगे ना दोस्तों, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव है, लोग किस्म किस्म के हैं, सताने वाले भी की कमी भी नहीं है। और साथ ही साथ क्या है, हमें प्यार करने वाले भी बहुत हैं, बहुत सारे दफनाने वाले भी हैं, सताने वाले, दफनाने वाले, प्यार करने वाले, इस तरह के कई इंसान जो है हमारे लाइफ में भी आएंगे। लेकिन ज़िंदगी का नाम यही है, इन सब से किस तरह से सलूक करना है, क्या है, हमें भी जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दुख हो या सुख, है ना दोस्तों, ये दोनों ही पार्ट ऑफ लाइफ है। इसीलिए तो अब्दुल कलाम जी ने जो कब्र में लिखा था, इसे कोट आउट करके सबको सुनाया था एक बार पब्लिक में। एक कब्र पर लिखा था, किसी का क्या इल्ज़ाम दो। किसी को हम इल्ज़ाम नहीं दे सकते दोस्तों, ज़िंदगी में होते हैं ना, ज़िंदगी पे क्या है ना, सताने वाले हमारे अपने ही हैं, दफनाने वाले भी अपने अपने ही हैं। इसीलिए क्या है, जो पल है इसे खुद अच्छी तरह से जीने की कोशिश करें और लाइफ को क्या है, लाइफ में आगे बढ़ें। हाँ दोस्तों, अंतिम गीत के तौर पे मैं एक गीत आप सबके लिए छोड़ जाऊंगी, मेरी तरफ से आप सबके लिए होगा। आपके आरजे मोनपी 100.7 FM जो में आप सबके साथ, मैं लौटूंगी आप सबके लिए 10:40 में। तब तक के लिए मेरा फिर से इंतजार कीजिएगा। गीत ये रहा आप सबके लिए, पाही लिया गीत प्ले करूं या कुछ और। मैं देख रही हूँ, फिर भी तेरे खातिर इश्क मेरे, ये गीत जो है 2025 का नया गीत आप सबके लिए छोड़ जाती हूँ।
1: ORS le Zingki subcenter Naibira athlonin alakthia nopang kotholo chu ni som pali chung zing pek turania kotholo are hnu ko in ni som pali chung zing pek nge nge turani nopang kotholo ta na ORS le zing pek hi treatment him ania kotholo atidam chakani nopang note note nilai kotholo te chu ei tur note pek thul lo tur andam lo lai le tam hnu ko in chataka ei tur pek zel turani
2: Zozil secret hian inunan ti chia meizu khian ti sen omna bang atibana thil hlo om tak tak apelu thi chu chuan heart attack a thlen thei heng thau chia fian te khat hi meizu thin tu kum som thum pa ni mi lek lunga ti sen petu ber atanga hmu chu ani Zozil secret hian inunan ti chia vai hlo hian thina thlen voina ban san ro mipui hlo na na ti chuak tu chu ministry of health and family welfare government of

आपके आरजे मोहन पी 100.7 FM जोगोई में आप सबके साथ एक बार फिर आया समय फिर से हिंदी गीतों का आनंद लेने का। दोस्तों चलिए चलते हैं गीत की ओर। तुरंत ही बहुत सारे सुंदर सुंदर गीत लाई हूँ आप सबके लिए। सबसे पहले गीत के तौर पे हम सुनते हैं, आपको क्या चाहिए पता नहीं, मगर ये गीत जो है आप सबके लिए डेडिकेट करना चाहूंगी। चलिए रातन लंबियां गीत से शुरू करते हैं। ये रहा गीत आप सबके लिए।

दोस्तों हंसते रहिए, क्योंकि हंसने से जिंदगी और हसीन हो जाती है। मैं जानना चाहूंगी आपके SMS की ओर। मैं मोहिते की ओर से SMS आया है। इन्होंने कहा है, माँ मोहनपुरी नमस्ते, ड्यूटी नामले कह करके इन्होंने हमें SMS दिया है। अच्छा लग रहा है, शुभकामना मेरे लिए। मैं मोहिते, आपको भी नमस्ते, और इसी तरह से आपका दिन भी शुभ हो। निले नाम ओ चौन तुई तक गई छाक तान कन गई छाक ले तो जोंग जोंग तान करों त्या चौन के वाला की ओर से यहाँ SMS आया है। इन्होंने कहा है, फर्नो मोन पुई मिंग मोई ते अन आ मिंग मोई ते अन कटन अप्यांग अरोन चन वे आ अन चकलो जेल खोपा खो ए मिंग मोई ते अन कटन अप्यांग अरोन चन वे जेल आ तीना नहीं अन चकलो जेल खोपा खो कल सपने कंग रोंती ने ओले के बाल ही आनी मो अटन ही इलो टन पुई जे दोन गे नियांगा इटन दोन तो लौती खा लोइन ngai to re re ula tiro ke chu ma se tan zel la ka do mo ke wala na tan khalo tan zel lang ka du em em ni ke wala run lang le hlol mai thank you tui takin ni ngai sadon dia o chan da vai ni tan karon ti ni se and yahan pe duati ki or se यहाँ SMS आया है। इन्होंने तुंगे इंग्लिश ड्यूटी आ रुनते हैं, इंग्लिश ड्यूटी ही इन आरजे देते हैं। हाँ यहाँ टाइप चल रहा है, जिल जा महिया ने टाइप में का चौन आरजे माँ मोनपुई नमस्कार नमस्कार रंतिया आरजे माँ मोनपुई इपिया नमा लुआ लुलाई ए मतिनी लेन लाई रोल लो तेरा इतले रोल छुआ छाउ खुन लाई मु अचाक ओम कतिंग ओय ngoi इथा चुंग चुंग मतिन करिंग नेक्स्ट सॉन्ग इतान चो रंतिया ओय कवान लोम ते रेंग एम जेल जामा इंपोनी से tui takai ngai thakutan irani ngai vong vong me kang ti ka ringa mo chuan fb lama i life le mai don nem ni ang khiri nuam swa swa mai siar on tia fb lama chan voin chu ka hun ni lawa kalom em em bok ta ni chuwang chuan ai hetia enge ni mu anga chu hianin ke inga ke manin ke nang mani kan mu ve thei si lo chewa fer lo deuh le ka lo mani na taka chuan engpo ni se hetia in sms kan lo chhar te kan hlime mem ta kan hlim zong la hi min bol chung hianin soi thiam deu deu la hi in ni vek bok si mo engpo ni se jilal za ma sms kan lo hua na te thok pa zel ni ten kan lo sia a chuwang chan na tho no am karon tia nga chuan min lo ngai thachar char don ne o कन गई थाक तुर जोंग जोंग इतान करों ती बोके इसी तरह चलना चाहूंगी अगली गीत की। और अगला गीत जो है वीर फिल्म का बहुत ही सुंदर सा गीत, सुरीली अखियों वाले, ये रहा आप सबके लिए।

वाकई में बहुत बहुत सुंदर गीत था दोस्तों। मैं कहना चाहूंगी अपने रिश्तों को उस तले की तरह बनाओ जिसे हथौड़े की चोट तो मंजूर हो मगर किसी दूसरी चाबी से खुलना मंजूर बिल्कुल ना हो। ठीक है ना दोस्तों, मैं जाना चाहूंगी आपके SMS की ओर। यहाँ दुर्गेश नगनपुर की ओर से इन्होंने कहा है, गुड मॉर्निंग RJ, नमस्कार आपको भी, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात और नमस्कार। ठीक है, आपका दिन शुभ हो दुर्गेश नगनपुर, आप सुन रहे हैं हमें, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और इसी तरह से जो गीत हम यहाँ से सुनाने वाले हैं, प्ले करने वाले हैं, आपके लिए मैं डेडिकेट करती हूँ। और यहाँ में मोइते लिखता है, मा मोनपुई उना पाके वाला खान मिंचो फो सु से ब्राइट बकेट आ कखुंग ले पल अंगे अटपले पुर मयंग रंती ने टप दोन च्यांग बक्सिया तरो इन पो नि से उना पाहे खोंगै वे दे थौ बक्सिया मो इन पो नि से इंटन खा लवि नंग प्लोंग जे सिलमा से इंटन दुन खा nghe đi lâu chắc một mất sẽ tin đồ sắc nó cần hoàn đồ năng dâu ô nhưng mọi tia hey bright bucket aron say nha ô kê va là anh nghe anh ấy đàn lẽ ý lão em cho anh mình mọi tia tuy ta cái ngày khác tan cần ngày khác lệ tuổi tan đôi ti lịch ti hay ở chỗ món tuổi tia ra hôn đi lạc hồ ti mày ý là aron ti lệ mày ý là aron

ते तेरा होने लगा हो कलौ सुंग ओ तेरा होने लगा अधिकचा एम दुआ तेंग पोन दिसे मिन लौ गाय थाक लो मे मे मा चोन तुई तकई गाय थाक तान कन गाय थाक ले तोरते इतान निसे चोन इ फर्स्ट टू मोय इरन ति फो हके शरेंग ने आ चान तुना कन गाय थाक ले तोर पो हे मो यंग ये जो है आप सबके लिए मैं डेडिकेट कर रही हूँ चंदुआती इला दुहे लो जोन कतुमंगे ओ चलना चाहूंगी गीत की और ये रहा आप सबके लिए।

दोस्तों, जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, और अच्छा समय जब आता है तो ऊपर वाले को न भूलिएगा, ईश्वर को। और जब बुरा वक्त आता है तो, है ना, ये सोच लीजिएगा लीजिएगा कि बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सके। चलिए चलते हैं अगले गीत की ओर। अगला गीत जो रहेगा, तेरा होने लगा हूं, ये गीत जो है अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म का बहुत ही सुंदर सा गीत है। आतिफ असलाम की आवाज में हम सुनेंगे, और द्वाती, खास खास तौर से इन्होंने इस गीत को पसंद किया है, इसीलिए द्वाती आपके लिए। नंगमा तान करंती बी कंगा छंचू इ दो वांगे रन सोई लन इन थ्लसों चंग चंग इन तरा इतान ल्याव ल्याव। और जितने भी इस वक्त हमें सुन रहे हैं, आप सबके लिए जाता है। और जो हमें SMS सुबह से दे रखे हैं, आप सबके लिए खास तौर से ये गीत जो है मैं डेडिकेट कर रही हूँ। ये रहा गीत।

द्वाती की ओर से यहाँ SMS आया है. इन्होंने क्या कहा है देखते हैं. आज मन पुई लो में अमोय कती रंतिया इलो लोम एम एम अमोय ते इलो तिया के पो कलोम एम एम ने अ द्वाती. और इसी तरह मैं चलना चाहूँगी अगले गीत की ओर. अगला गीत हमारा रहेगा हाँ ये एक बहुत ही मशहूर गीत लोकप्रिय गीत है आप सबके लिए छोड़ जाती हूँ ये रहा.

गीत था दोस्तों रांझाना, बहुत ही सुंदर गीत वाकई में। और मैं कहना चाहूंगी अपने वो होते हैं जिनसे बातें खुलकर की जा सके, संभल कर नहीं, ठीक है ना दोस्तों? संभल संभल कर जिनके साथ बात करना पड़ता है उनका साथ भी देना वैसे हमेशा नहीं चाहिए। कोई होते हैं अगर ये मैं कहूँ तो ये क्या समझ लेंगे और जाके किनको क्या कह देंगे, ऐसे ना संभल संभल के जिनके साथ हम खुल के बातें नहीं कर सकते वो अपने नहीं होते, ठीक है ना दोस्तों? मैं जाना चाहूंगी एसएमएस के और यहाँ के वाला की ओर से। एसएमएस आया है, इन्होंने कहा है फर्नुमान पुई ब्राइट अमीन हनखुंग दोनते से करूल कलौती खारूल कलौती वही चुआन अमा थराव पो ओम फलवंग रंती ने रन्नोई न समय मो है के वाले विन्नी चो उना पाही मो अलिम रियाओ में एंग पोनी से मेंग मोई तेया तुन लाइ फुटबॉल बौरवा का जोंग जोंग नेन थिन रिम ने नेन नुइ न तम तक नेन इन लो इन बिथिन वेल ते पो अनि मे थे अनि तिरो है इन इन दु जोंग te alo in ang boka kati om zia chu in eng lo zong in chan zong te lo in ang zel ti te in han sha dana hen ton lai chu in in nim nai ria hu niang a eng po ni se ke valan ron chou le ve le che ni hi o tu ta kein nge thak tan a ke val po i tan kan nge thak le tur zong zong karan ti ni se jelal za ma yahan pe jelal za ma he he kalo mu e o khitiang khian kalo lang lo man za man ni kha आज मा मोन पे तुए मो एफ बी लाइव वीडियो ककोल क्यू क्यू क्यू और तीनी अले अले तिहान का लो इन मूवे इन मू एम एम पो ही कलो गम लो तुक चेक लो वा एंग पो दी से है तिहान का लो लंगवेल अनि की मो ओले कलो मलो तुके ओ जेल जामा तुई तक गई थाक तान कन गई थाक ले तुरते इतान ओ chuan idipi a nang nang nang chu smart wa me hel chuan in miron thon tu te dpi in da ang hi ani chuan in in low smart in low mel ta lom hle me ki ti chuan chal ta cha hongi agle git ki aur agla git bhi bahut bahut sundar hai aap sab ke liye ye jo hai na sanam ki aawaz mein hum sunenge mere mehboob qayamat ho gayi होगी, ठीक है? ये जो है आप सबके लिए मैं डेडिकेट कर रही हूँ।

दोस्तों, मेरा यहां से जाने का वक्त आ गया है, लेकिन जाने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि बदलाव से मत डरिए अगर वो आपके जीवन को बेहतर बनाता है तो। और देश को भी बदलाव से नहीं डरना चाहिए, राज्य को भी, पॉलिटिशियंस को भी, हमें भी, पब्लिक भी, है ना, सबको, सब इंसान को बदलाव से नहीं डरना चाहिए। अगर देश के लिए, राज्य के लिए, खुद के लिए, परिवार के लिए बेहतर हो तो बदलाव के लिए हमें डरना नहीं चाहिए। इसीलिए इस वक्त हमें सभी सुनने वालों को मैं बताना चाहूंगी, बदलाव से मत डरिए अगर वो आपके जीवन को बेहतर बनाता हो तो। ठीक है दोस्तों? और यहाँ पे जेल अल्जाम टाइप कर रहा है, मसे कछियार मन तोलो में थे या जेल अल्जामा। मैं लौटूंगी आप सबके लिए, तब तक के लिए मेरा फिर से इंतजार कीजिएगा। मैं लौटूंगी दोस्तों आप सबके लिए 12:40 में, दार सोम पथीले मिनित सोम लिया के लौले लिया। हाँ दोस्तों, इसी तरह से अंतिम गीत के तौर पे मैं आप सबके लिए छोड़ जाती हूँ, मिले हो तुम, नेहा कक्कर, टोनी कक्कर की आवाज में। ये रहा आप सबके लिए।

आपके आरजे मोहन पी 100.7 एफएम सोई में आप सबके साथ एक बार फिर आए समय फिर से हिंदी गीतों का आनंद लेने का। दोस्तों हम चलेंगे गीत की और पता नहीं हम क्या प्ले करेंगे, लेकिन मुझे यहाँ पे जैसे प्लेलिस्ट में है, सबसे पहले गीत के तौर पे मैया यशोदा, ये जो है कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, अनुराधा पौडवाल की आवाजों में है आप सबके लिए मेरी ओर से। ये रहा गीत।

दोस्तों, मैं आपके SMS की ओर जाना चाहूंगी। यहाँ पे SMS जो है वी कुंगते अते पाकुंग अते जेल जाम अते CS देखा हनरो इन गई तो स्याक सुप सुप मया चुआन है वी कुंगते ना अरन सोई ही CS देखा कन रन छियार सक में अनि छुआक त बक्सिया छुन थंग साइलुंग ति अनि चान जिल सा महियान इन मेरे लिए यहां पे SMS इस तरह मिन रन थोना आरजे मा मान पे गुड आफ्टरनून रंतिया नंग पो गुड आफ्टरनून MMO कंती कंतिया गुड आफ्टरनून ते लो हुन लेत देर में नेक्स्ट सॉन्ग का थो पुइते पुजाई माले पु समू जी तान ले अपवांग तू तान सेल्वुम थू रिन और रंती आ चौन थोन तू तान सेल्वुम थू रिन कंती ले दिया जेल जामा तो इतना कई लोग इतना कतान इंगे कन प्ले ले तोर ही तान निरों से ओ चलना चाहूंगी अगले गीत की ओर। अगला गीत जो रहेगा दोस्तों आप सबके लिए मेरी तरफ से ये रहा गीत मेरी तरह तुम भी। ये गीत जो है पुराना है मगर 2002 का बहुत ही सुंदर गीत अलका याग्निक बाबुल सुप्रिया सुप्रियो की आवाजों में है। क्या यही प्यार है फिल्म का एक बहुत ही लोकप्रिय गीत है। आप सबके लिए मेरी ओर से जाता है।

दोस्तों, गीत वाकई में बहुत ही मज़ेदार था। मैं जाना चाहूंगी SMS की ओर। हेलो आरजी जी, आई एम सिक कह करके हितेंद्र दास असम की ओर से इन्होंने हमें भेजा है। एंड ही इज रिक्वेस्टिंग प्लीज प्रे टू गॉड। ओके ओके हितेंद्र दास, व्हाट सिकनेस आर यू हैविंग? वी डोंट नो बट वी विल श्योरली प्रे फॉर यू। ठीक है ना? और आप अपने आप का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, हैव मेडिसिन एंड ईट वेल एंड गेट वेल सून। ओके हितेंद्र दास, एंड द सॉन्ग्स आर डेडिकेटेड टू यू, राइट? मेरी तरफ से आपके लिए जाता है, और आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाइए। ओके हितेंद्र दास, आपके लिए अगला गीत जो रहेगा खास खास तौर से मेरी ओर से रहेगा। और यहाँ के गई थे की ओर से हुई हम कबूला टू हंट ऑफ जिया ही थिंक पुई कन इनवे का अनारक कोमुरमुरा। बाकी जो छियार पोछियार तोशी लो में यंग कतेन लु तो क्रोनत्या मन बॉय रोनती ने FM गई थाक पोकती लो जो वे क्रोनत्या कलम का एन तो लो में रो चुवां चान इन निगोत में गे तिंगे मोलो ट्रोप एम ने हेत्यांग ही कनुम ले चो पलथी ने ने ओ चुवां चान इन इ ट्रोप लोवांग ओ चान तुई तकिन लोंगाई थले फोट मे ते ओ के गे ते आ खलम पंग गे तो लो खा दिन हेलम पंग आ खा नि बेंग लो छि देउ मे लंग तुई तकाई गे थ्ला कता नेक्स्ट सॉन्ग ही इतान करोन ते नि से। एंड यहां पे वी कुंग ते की ओर से आरजे उमान पुई जेलल जा मखा असवाल सी मिंति दुदा थे सी उसे जोर से बुरी तरह से पीटो। आ गूगल ही चुई भान छोर एम एम बा का हियान इन मो इफिंग क्लट वी कुंग ते आ ओ इफेल क्लट फिंग ती का मो हे अच्छा एम एम जोंग इन अनि चु उसे जोर से बुरी तरह से पीटो रोन ते का पीट तक तक मे दोन मन चु ले एंग पो नि से जेल जा महियान इन वी कुंग ते ही लो ती दो दा तो सु से कंती ने चान हाँ बुरी तरह से पीटना पड़ेगा शायद, है ना? एनीवे वी कुंग ते आ है SMS का मुदल होल मे अमा जों खान इन खोइ लो मांगे ट्वान न्यांग ले ओ ती खान इ रिल रुआ चान गे इमु इदम मो कुंग ते चान तुई तकाई ngai थ्ला कतान ओ एंड हियर इतेंद्र दास इज सेइंग थैंक यू सो मच आरजे जी कह करके हमें SMS दिया है। यू आर मोस्ट वेलकम। इसी तरह आपके लिए हितेंद्र दास ये दम लवा चुवांग चुआन इन कंट्रोंग ट्राई ना कं श्रे थे उदोन न्या हे के दम लवा अरोन तिया खोंगे तकिन मिन लो टोंग ट्राई सक रुअ रोन तिलोम लोमने चुवांग चुआन इन थ्यान पा हितेंद्र दास ये कं थ्यान पा मो कं थ्यान पा मीन्स हितेंद्र दास आर फ्रेंड। ओके सो आई एम टेलिंग देम दैट यू आर सिक। ओके एवरीबडी आर गोइंग टू प्रे फॉर यू, राइट? इसी तरह मैं जाना चाहूंगी अगले गीत की ओर। अगला गीत कम सुंदर नहीं, बहुत बहुत सुंदर है ये गीत जो है। हम साथ साथ है, सो स्वीट है ना? गीत के बोल जो है ना उसी से ही बहुत ही मजेदार, बहुत ही खूबसूरत स्वीट सा एक गीत होगा ऐसा पता चलता है ना? हम साथ साथ है, और हम कहते हैं जब हम साथ में हैं तो हम स्ट्रांग है ना? चलिए चलते हैं गीत की ओर। ये रहा आप सबके लिए।

दोस्तों वाकई में बहुत बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे क्या है, SMS आ रहे हैं। आरजे प्ले ले तुर्का नंगमा तान ले लोंगाई लवे जोंग जोंग तान ले आरजे जोंग जोंग तान ले कठियां ते वेंग शंग शंग अमी ते तान लल दिन पुया फलकोन वेंग लाई हियान रों तीनी। ओके लल दिन पुया फलकोन वेंग लाई हियान इन ठियां ते जोंग जोंग ले आरजे जोंग जोंग रों ती आ किनी पोगन लो में मा चान इठियां ते जोंग जोंग पो चान लोंगाई लंगे से कंतीनी। हा यहाँ पे नंगमा तान करोन ते लेट वे ओ लल दिन पुया फल कोन चुआन वी कुंग ते यान ओ तुक चुआन ए खम वे ले कलो मु हेल जर जरा छोन थिंग पुई इन तोरिन कथवा करोन लोन हाल चुक चुक ने पथियान जारा कदमे हितेंद्र दास चु लोदम जेल रोसे रोंती ने चान यहाँ पे के ngai te hianin heta hian 1982 chho khan he cinema hall a hianin atika o ama pokanin yen ve ngai khati like yen ve ngai em rontia khati hun lai khan wan boi rontia 1982 a chanai zola kala om lawa chu wan chan ji el cinema hall om hun lai khan ya he cinema hall om thu hi kathian te helaya om to te chuanin min lo ril ve ngei lom ke po chuan ni e tuna e ilung aleng vengo tangtro heng hla ho teng te po kha khang hun la ya hla teng te po hi ple cha kom ya weng tika mon chan kan la ting nge don ne o king in tlerzing a khyani tel ve hi alem le kho ya khyan nge omang o king ai te a o chan e king ai te zui tel phas lo shim shim manga tro eng pon is se jail cinema hall te om to lowa eng cinema hall ma pom lo kan rama chuan chu wang chuan cinema om sia chu nia kan thatlang thowa amai ro chu ni e a hall tak tak ang chi hey state danga omang chi ting te kha om lem lowa ni e ka shalo kan engwa nga top ta vek nge niang le heng ho hi ka shathiam cha lo ta ni chu ke chuan mo chuan ing pon ni se ke ngai te a tui ta kai lo ngai thak tan barsat film mami kumar sanu le alka yak nik te sang nge mai hum ko sirf tum se pyar hai ye geet jo hai main play karne ja rahi hu right and eh ta yan in lal din pu ye te ngai ke ngai te te vi kung te hitendra das aap sab aapke liye all are praying okay and here Vikung Tia is saying get well soon, okay? Or yahan pe jail zamate mengboi te te duati te chuan midang dang oh keval thank the po Durgesh even you also yeah thank you so much for listening us okay ye raha aap sabke liye geet humko sirf tumse pyar hai गीत बहुत सुंदर है प्रसाद फिल्म का बहुत ही लोकप्रिय गीत।

आपकी आरजी मान पी 100.7 FM जो में आप सबके साथ दोस्तों आया समय फिर से हिंदी गीतों का आनंद लेने का मेरा लास्ट सेगमेंट है ये। और मैं कहना चाहूंगी यहाँ खूबसूरत से खूबसूरत गीत आप सबके लिए लाई हूँ। और सबसे पहले गीत के तौर पे आप सबके लिए तुमसे मिलके ऐसा लगा ये गीत जो है मैं आप सबको डेडिकेट करती हूँ। ये रहा गीत।

दोस्तों, मैं SMS की ओर जाना चाहूंगी। यहाँ चुंगी की ओर से SMS आया है। चुंगी चान मारे, ठीक है ना। अजय मामा अंकल लौंगा था मैं के और रंतिया क्या कहना गाय था इला प्यार के पल नैनो और रंतिया आला हमारे रोजू चुंगी के लास्ट सेगमेंट निया है ताहियान छप छुआ सा कलो नहीं तो आ चुआन मिलो थ्याम शाम ना अम्मा जों जों खानिन दुजों अंग अनरोन थनतेंग ते पोखा कनलो तिदे उमोल मोल सिन मले पो निसे तुना ह्यान एंगे ने लदंग दाइ वे देव लेक नल देव देव सी खतियांग अंग ची खा करोन ति छुआक दोना ए नंग मानि पोन नलिन ति दोन ति कशिया चो मिलो ngai थाक सख छिन दोन या ओ चोंगी मिलो ngai थाक कलो मे मे मनि कन लंगाई थाक तुर जों जों इन तान करोन ति स्पेशल टॉक इन ओ और यहां पे

sailo ki or sin hone kha mp lo ringlo ka boilu tukar on tia karo kalo ludwe man le cha ron ti ne van lom te reng mlz sailo hei ron ludwe man ta a chuan hla kan ngei thlak tur te itan karon ti vek ni se chuan hetlai a hian laldin pui a hian ni la type me ka chuwang chuan kan lo ngai changa nga chumi chung chuan in hladanga kan lo peng le lokang chala cha hongi git ki or dosto ye raha git aap sab ke liye ये गीत जो है ना मुझे बहुत बहुत पसंद है आप सबको भी पसंद आएंगे मुझे ऐसा लग रहा है ये जो है दिल आ गया है तुम पे नया गीत है आप सबके लिए डेडिकेट कर रही हूँ

दोस्तों, मैं SMS की ओर जाना चाहूंगी या हाल दिन पुया की ओर से, फल कौन फेंग लाई की ओर से, इन्होंने क्या कहा है देखते हैं। और जो मोन पुई इफिल एम ए मा करोन थोन रेंग नंगमा तान ले लौंगाई थवे जोंग जोंग तान ले कछान ते वेंग श्रंग श्रंग मी ते तान अरोन ती ने रोन थोन रेंग रो तिखान रोन थोन रेंग रिंग मे रो पई मे अलो ने ओल दिन पुया इंग पोन दि से मिलोंगाई था कन लोम ए मे मनी दि खाई लो छ आंगा चान SMS मिन थोन तु ते SMS थोन लेम लोवा मिन गाई छतु ते कन जवाई तान इन लोए मे मा FM जो ओइसा पॉइंट पसरी तान इन लोए मे मनी बिग तकिन SMS मिन रन थोन तु ते नो हे एंगे बो रॉकिंग ति नोम लेस वाल छिने नी दि खा इन लो छदोन न्या। चान अगला गीत जो है ये बहुत ही सुंदर गीत है दोस्तों, और ये गीत जो है ना, फिर कभी ये गीत आप सबके लिए मैं डेडिकेट कर रही हूँ, और खास खास तौर से जिन्होंने हमें SMS दिया है उन सब के लिए। ये रहा गीत।

दोस्तों, मैं SMS की ओर जाना चाहूंगी। दो ही गीत अब हम सुन पाएंगे। आरजे मामोनपुरी नमस्ते, गुड आफ्टरनून, कहा है जिलजाम यहाँ, और इन्होंने कहा है आरजे ज्वाल बोई ती दान तका वो इन इस सेगमेंट जेट जोंग अखम ओम लोले मैतलोंग तकिन होंग अंगचे ओ नेक्स्ट सॉन्ग इतान चो रोंती ने खम ओम लो छिन तिरो मासे निया तिखान करिन बाय बाय लो हुन ले दोन तरेंगा जेलल जामा निलेंगा हुन मिन मन पुये वांगिन ले SMS ते मिन लो थोना क सेगमेंट तिना कवान लोम ते लुले मि चुंगा ओ चोन ए नंग पो थ्वांग तकिन ना लो थोक जेल ला लो दमिन लो हिम एम एम जेल ला ति खा के दु सखना चेनि सेला और इसी तरह से लल दिन पुये ते एल साइलो ते चंगे वी कुंग ते आ गई ते आ के गई ते आ हितेंद्र दास आप भी ठीक हो जाइएगा। ओके मिंग मोई ते द्वाती के वाला दुर्गेश ते चौन सी जित ते ओमेगा सांग ते चौन ए इंग्लो तुम ये निका द्वाती हाँ इन सब आ इन चौन का लम्लो ते पोखा पीसी जैसी काते चौन इन मा हुनि रम लो तेंग ते पो अनरोन लंग दु वक तो लो ना इन कन लम शिम शिम मंगा हुन दंग SMS रोन थेन थोन न सथिन ए मेम देन नि आ अब हम अगले गीत की ओर जाएंगे। अगला गीत भी बहुत बहुत सुंदर है आप सब के लिए। ये रहा मेरी ओर से ये गीत जो है अब सोच लिया दिल ने। ठीक है ना दोस्तों, ये गीत का बोल इस तरह है आप सबके लिए।

दोस्तों, अंतिम गीत के तौर पे मैं आप सबके लिए छोड़ जाऊंगी एक गीत, और इसी तरह जिन्होंने हमें सुना है आप सबको मैं धन्यवाद देती हूँ। सभी श्रोताओं, सभी दोस्तों को तहे दिल से मेरी तरफ से धन्यवाद। मिलूंगा इसलिए तो जोंग जोंग तेन जवाई सुंगा ग्लोम कनलो में मैं मनी देखा मिलो शायद सक दोन्या। और यहाँ पे जीवन एक किताब है जिसमें हर दिन एक नई सीख हम सबको मिलती है ना दोस्तों। इसीलिए अनुभव से ही इंसान बड़े फैसले लेना सीखते हैं, और बहुत सारे हैं जीवन के बारे में। जीवन में हर सीख हमें एक नई दिशा भी दिखाती है ना। इसी कारण से क्या है, जीवन जीना है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी सोचना है कि हम किस हम कितने दिन के मेहमान हैं इस जिंदगी में, इस जीवन में हमें पता नहीं है। इसीलिए हम सबको हमेशा अच्छा जीवन जीना है, दूसरों के लिए वरदान बन के जीना है, प्यार फैलाना है, और मन में क्या है, नई सोच, अच्छे वाले, ठीक है ना, अच्छी वाली सोच लेकर जीना है। और इन्हीं शब्दों के साथ, जो बीमार हैं आप ठीक हो जाइएगा, जैसे हितेंद्र दास आप बिल्कुल ठीक हो जाइएगा, और इसी तरह और कई लोग श्रोताओं में से भी ऐसे हो सकते हैं जो बीमार हैं। आप सबके लिए मेरी शुभकामना ये है कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, और आप सब स्वस्थ रहिए, और हमेशा हमेशा क्या है, सुख और साथ ही साथ खुश भी रहिएगा। आपकी आरजू मॉन्टी 108.7 FM जोवोई में आप सबके साथ, मैं जब तक ना लौटूं तब तक के लिए मेरा फिर से इंतजार कीजिएगा। और इसी तरह से ये अंतिम गीत जो है, वी कुंग ते अत्यामिन इन जवायतान ओ निचिन खाने नमिन खा का लम्हाई पल तत्ताने। और इसी तरह सभी हमें सुनने वाले, सभी हमें SMS देने वाले, आप सबके लिए ये अंतिम गीत जो है मेरी ओर से जाता है। और ये गीत जो है ना दोस्तों, ये कुछ कुछ होता है गीत ऑल टाइम फेवरेट रहा हर सभी का, है ना। और अलका याग्निक उदित नारायण की आवाजों में हम सुनेंगे। इस गीत को छोड़ जाती हूँ, और आप सब इसी तरह से हमेशा हमेशा खुश रहिएगा। बाय बाय।

0: And that is all on today's session of Western music featuring Black Sabbath and Toto. And that is all on today's session of Western music, broadcasted from Akashvani Aizawl.
1: यूरो बैंक ने यूनान से भारत में सीमा पार धन भुगतान के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। एक रिपोर्ट।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है। श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ अगले महीने की 29 तारीख तक हर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की दो प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमेरिका और ईरान से विरोधाभासी बयान आ रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोहा में नई वार्ता आयोजित किए जाने के संकेत के बाद अमेरिका ईरान के संबंधों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को दृढ़तापूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा कि फिलहाल अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत की योजना नहीं है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि अभी उनका ध्यान 14 सूत्री समझौता ज्ञापन को लागू करने पर है, जिसके बाद वे किसी व्यापक या अंतिम समझौते पर चर्चा करने पर विचार करेंगे। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय बचाव और चिकित्सा दल वेनेजुएला के अधिकारियों के साथ मिलकर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, खोज और बचाव अभियान भी चला रहे हैं और प्रभावित समुदायों को जीवन रक्षक मानवीय सहायता पहुंचा रहे हैं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल चालू है और आपदा

ज्यादा में घायल हुए लोगों को चिकित्सा देखभाल प्रदान कर रहा है। इससे पहले कल भारत ने वेनेजुएला में राहत और बचाव कार्यों को मजबूत करने के लिए भारतीय वायुसेना के 2 C-17 ग्लोबमास्टर विमान तैनात किए थे, जिनमें 41 सदस्यीय बचाव दल, 1 भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल, 30 टन राहत सामग्री, 6 टन दवाएं और चिकित्सा उपकरण और 2 भीष्मक्यू पोर्टेबल अस्पताल थे। केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज बताया कि सरकार ने देश भर में दुर्घटना, संभावित ब्लैक स्पॉट और भूस्खलन संभावित सड़कों की पहचान की है और 50,000 करोड़ रुपए की लागत से सुधार कार्य शुरू किए हैं। नई दिल्ली में सड़क सुरक्षा पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि उचित साइनेज, लेन मार्किंग और अंडरपास सहित अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सड़क इंजीनियरिंग सुनिश्चित करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। श्री गडकरी ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने, तेज गति से वाहन न चलाने, हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने, लेन अनुशासन बनाए रखने और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करने का आग्रह किया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एफएम जॉय पर। आपके साथ जुड़ी है आरजे ओमदे। समय हो रहा है शाम के 5 बजे और ये सिलसिला जारी रहेगा 5:30 बजे तक। और हम आपका खूब मनोरंजन करने वाले हैं हिंदी फिल्मों के गानों द्वारा। और आपको एक एक करके मैं बहुत ही सारे खूबसूरत गाने सुनाने वाली हूँ। और सबसे पहला गाना जो मैं आपको सुनाऊंगी वो होगा एनीबडी कैन डांस मूवी का ये बहुत ही लोकप्रिय गाना, मोहित चौहान की आवाज में बेजुबान।

ये था एनीबडी कैन डांस मूवी से बेजुबान मोहित चौहान की आवाज में। अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लदिन पुया फल को इन्होंने लिखा है। आज ही प्ले ले तुर खाना माता ने लंगाई था वे जोंग जोंग तान ले आज ही जोंग जोंग तान ले का ठियान तेवें शंग शंग मी ते आरसिया रिन मोया थुआ गा मुआन जवा रिन मोया वाल पुया आ चिन सीधा लो मते पुये ते तान अरों दिनी हो लदिन पुया हियान और थन सक फेक्ट चवनी ते चवनी मे मोते हियान ओमते नमस्ते ड्यूटी नाम ले आपको भी नमस्ते। मामू निरम लो ने लिखा है द ओम स्मिन लो गाय एम सनिन चुक रे मी अलवांग कल नलती खा पोई मो अत्या गाय लुतु गाय लुतु छे वेंग जान ने ओ कति उठी ले तो इरोन लंखा थी कति लुतु कमो इदम इदम लवे मो कति मन ही अला मेरो चो इरोन लंग ले ही कलोम तक जेत अनि तिलावम छेन। जे लजा में नर्जी ओम दे नमस्ते आपको भी नमस्ते गुड इवनिंग अरोंती आ गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तुन सेक में ना इ प्ले ली समी जोंग जोंग खाई ड्यूटी पुई ने निन तान ले जरम रिमोई एफएम जो ओंगाई थतु दे तान पो अरोंती ने आरजे वीली जनिन ड्यूटी आ सॉरी कन चेयर चो जो चेयर कलो चेयर लोग लवन नी ओ चेयर लोग इलांग जान क चेयर वी अलवंग लाइ मिन बुम न तो रि मो हाजी ओपते जनिन ड्यूटी नो आबो ले अरोंती ने आ नंग पो हुन फन नो ले ते चुआनी विकुम ते हन आरजेपी ओम ते रेमननी चिबाई ओ रोंती अका रोंती बाई तो से अमो नंग पोले। ते चुआनी हिंदी तो दास असम का भी दोस्तों इन्होंने लिखा है गुड आफ्टरनून आरजे जी आपको भी हमारे साथ बने रहिएगा हितेंद्र जी। और इसी के साथ अगला गाना आप सभी के लिए मैं प्ले करने वाली हूँ। अकेले हैं तो क्या गम है कयामत से कयामत तक।

के सुपरहिट मूवी का एक और लोकप्रिय गाना अकेले है तो क्या गम है, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में। आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे आपके मैसेजेस। मामूनी रमलो ने लिखा है, डॉम्स खतियांखा कदूची अनुअमची बल्ले बल्ले रोंती नल टोक टोक रोन प्लेस है लोने जनिन चो ए नुअमिन लोटी ये कभी से जेल जाम है ना आजियों ते इमो हिदेन दास असम ले मामूनी रमलो टेन अन ते अन नहीं तक तक तो दोन सिन इलोलों पुई फेम विकुंग इंडिया रोंडी रो विकुंग को लोर थियामन मोपाचियाना मोपाचियाना चंग दोन अनि चु तीन लोई चलता में मोटे आ चंग दोने आ पुई को पंग अनि नहीं हुन चु रोंडी नी रों काप ना को मे मामुनी रों चांग लेट बट kalau nga kang i reply hun ka kalau chang lo me ang jail sa me oh na deu la kin bu puin ron kap de agla gana hum sunenge ba khuda tu fi ho kismat connection se

बाखुदा तुम ही हो। मोहित चौहान के खूबसूरत आवाज में हमने ये गाना सुना। आगे बढ़ते हुए हम सुनेंगे बेसब्रियां, लेकिन उससे पहले मामूनी रामलोद ने लिखा है डॉम्स हितिन ददा सिमोन थी कलोम नमहुम हल पे न तक ही कन्या मो नम दंग ही चुनो थैंक्स छांग न लुतुक अतोक चे रोन सानदानी जेल जाम यान एंटी तक रोन तिलेंग मो कलाउ थियर जेलंग। आपको दोस्तों ये जो सेगमेंट है सुनने और सुनाने के सिलसिले को आपको कैसा लगा, आप मैसेजेस द्वारा हमें जरूर भेजिएगा और अपनी फरमाइशें भी आप हमें भेज सकते हैं। अगर हमारे पास होंगे तो हम आपके लिए जरूर प्ले करेंगे। अगले गाने की ओर बढ़ते हुए सुनते हैं MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी से बेसब्रियां।

इसी के साथ मैं आरजे योमती आपसे इजाजत चाहूंगी, वापस मैं आपसे जुड़ूंगी 6 बजे, ठीक 6 बजे। इसी के साथ इजाजत दीजिए, ठीक इसके बाद आरजे जोई आपके लिए लेकर आने वाली है वेस्टर्न म्यूजिक, जुड़े रहिएगा FM जोई के साथ।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एफएम जॉय पर। एक बार फिर आपके साथ जुड़ी है आरजे ओमतेई। शुरुआत हम करेंगे इस खूबसूरत गाने से जो कि मामूनी रमलोत को बेहद ही पसंद है। मिला हूँ इतलांगे कभी से या मामूनी रमलोत तालिया उलिया उखान करो प्ले सक ओ। और जो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी के लिए जान निसार केदारनाथ से।

खूबसूरत आवाज को जो हमने अभी भी सुना वो था अरिजीत सिंह की, और हमने सुना जान निसार केदारनाथ से। केदारनाथ जी हाँ, सारा अली खान पर फिल्माया गया था, सुशांत सिंह राजपूत भी थे। बहुत ही खूबसूरत दोस्तों फिल्म थी, गाने भी बहुत ही खूबसूरत थे। और ये मैसेज हमें मिला है, बी एल सोंग थू ने हमें लिखा है, शिफो ट्रंग कपू पो दलवाई थर रिंग अनिया कुम सोंग कुआ पल्ली अनि तो आ रेडियो ही कुम इंग मुसा तलवाई छ तो छीना मैसेज थोन गाई लो मासे मो रेडियो गाई थपे तक चु अनि वेलो मतिया ए पुसी सोइ लवाया ओ ए कन लोम तक से थतियांग तक रेडियो मिन लो लुत सक छेनी ओ अतान लियो लियो खान नेक्स्ट लाही करोन खान सक दोना। अगला जो मैसेज है वो मैं पढ़ूंगी, मैसेज दंग लही मामुनी रम लोथियान द ओम सुंगाई थचियांग ए जानि सार हि मक लुतु कोम जिया कशे थियाम चोंग लो कशे थियाम चोंग लवा कन्नुक अति उल कत सेल मिन नेवे टप अरते करन सुदोन करन छांगदोन छ छ आ विलोंग आ छतर चर ला ओ। अगला गाना जो हम सुनने वाले हैं अभी तक इन पुसी सोइलो आ तान खान करन खान सक ओ ओसाकी साकी बटला हाउस से।

साकी साकी बाटला हाउस से, और इसमें नोना फतेही को फिल्माया गया था, तनिष बागची नेहा कक्कर की आवाजों में हमने सुना। मामोनी रमलो ने लिखा है तो वहां नीजु कत नुकती ओल तल जेल और तू न मी लाने जो आना इन पर्सन अंग छु इन पर्सन को मैं कथन सक पो यान मो लाम ही चाक दो न तुकती का कशिया आ के वाला यान आज हम ते पुसोई लुआ तान और ते पुसोई लुआ कन मिलो गई थांगे कन बे से या हे ल थन सक तू इंग आ दोन ती खा कन कन सोई लो कन नी छु मो नंग मांग तो वा रेडियो मिन लो सक तू एफएम जो ओय मिन लो सक तू ते यन तम एम एम आ थनेम तक अन ओमा chung zi nga chuan hei message in on thon mol mol mei ni fel te hi chuan mo aage badhte hue sunte hain kar khoobsurat gana tum se hi jab we met jo ki mohit chauhan ki awaaz mein hum sunenge kareena kapoor aur shahid kapoor par filmaya gaya tha tum se hi

तुमसे ही जब यू मेट से. आई होप आपको जरूर पसंद आ रहा होगा. हितेंद्र दास साहब ने लिखा है कि इन्होंने हमें गुड इवनिंग कहा है. जी हाँ, समय हो चुका है गुड इवनिंग कहने का. आपको भी हितेंद्र जी बने रहिएगा हमारे साथ. वी कुंगते ने लिखा है इपले ले तुर्का हितेंद्र दास बियाल नु मा मुनी तान ले बुआंग पुए फिर पुई पा जे लजा मते तानोर मा मुनी हनर उन्धन ले चिया दोम स्कला दु इवन छे थे तक नुआ मे तुमसे ही पोही kadu raps kandu inang tina ni mai oh kan la du song nal kati hi lo ti ve thei zel hi kandu inang tina ni mai karina le shahid kapoor te anin ngai zon lai kha ni in kshya adi kho mai akwa la kwa la se fali khan kan nupui nupui ni dai khovel tak hi chu ron ti ni ngai zong te hi kan nupui pasal turti na hi ni chuang lawa taro tam taki hei vikung te pon thian aron fiam bo ron fiam che hi ten da si to pa chan midang de kha ni don tu tu vikung te po hian chat angai mo आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक और खूबसूरत गाना तू आके देख ले किंग की आवाज में.

तू आके देख ले किंग की आवाज में। अगले गाने की ओर बढ़ते हुए हम सुनेंगे, और ये आखिरी गाना होगा लव आजकल मूवी का एक खूबसूरत गाना शायद। और इसी के साथ मैं अर्जी ओमती आपसे इजाजत चाहूंगी, वापस मैं आपसे जुड़ूंगी ठीक 8:30 बजे, जो कि आज रात मैं लाइव आने वाली हूं। तो मैं अनुरोध करूंगी आप सभी से कि मेरे साथ जुड़े रहिएगा, और ठीक इसके बाद हम आपको सीधा ले चलेंगे क्षेत्रीय समाचार की ओर। जुड़े रहिएगा FM ज़ोए के साथ।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एफएम जॉय पर। आपके साथ जुड़ी है आरजे ओमतेई। समय हो रहा है 8:30 बजे हमारी स्टूडियो की घड़ी में, और ये सिलसिला जारी रहेगा 9 बजे तक। और इस भाग में हम आपका मनोरंजन करने वाले हिंदी फिल्मों के गानों द्वारा। और सबसे पहला गाना जो मैं आप सभी के लिए प्ले करने वाली हूँ वो है क्या हुआ तेरा वादा। इसका कवर है दोस्तों, और आई होप आपको जरूर पसंद आएगा। आइए सुनते हैं क्या हुआ तेरा वादा।

क्या हुआ तेरा वादा, जो कि बहुत ही खूबसूरत दोस्तों 90s 80s के गानों में से एक है ये। और अगला गाना जो हम सुनने वाले हैं वो है एमएसा के फरमाइश पर, एमएसा खान रोन था ये दिल का रिश्ता खा कन्ने वे जो नि वांगिन ले नाउते हन निबो का कन प्ले सकंग। ओ सुनते हैं, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। और इसमें दोस्तों अर्जुन रामपाल ऐश्वर्या राय पर फिल्माया गया था, तो हम सुनेंगे इस गाने को और आनंद लेंगे।

फिलहाल हम सुनेंगे अगले गाने की। और अगला गाना जो है ये किसकी फरमाइश, विदाउट यू इन्होंने लिखा था लेकिन हमारे पास नहीं है। वी कुंगते अराय रहते थे लिखा है मार्गरेट किम किमितान करोंथलांगे अरोंतिया रोबर्ट डिंग लियाना यान लौलुद वेंगाले हरोंतिनी मोरिस एलार खियांगते हियान मुइनवामे कवन लोम छिन एम जनिन चु थलाक एंग बोका मिसि फलचोन मेरा चांद मुझे आया है तीखा आई था इला आई मेदोने मई मासे इथु बेर कलाउ जोंगा ओम चान रोंते संगे चकतुमांग। ओ अगला गाना सुनते हैं डांस डांस मूवी से दिल मेरा तोड़ो ना बप्पी लहरी की आवाज में।

कहानियां जो मैं आपको सुनाने वाली हूं उससे एक व्यक्ति तो बहुत खुश है। कपले ले तू ही मंग ही जान पखत मि पखत ही लोम गोइ गोइ तुरी कश्या ए मामुनि रमलोत अनि तु दंग निलाविन मामुनि रमलोत का लोम एम एम दोना कले प्ले ले तुर ही केदारनाथ। केदारनाथ मूवी से हम सुनने वाले हैं अभिजीत सिंह की आवाज में जानिसार। ओ मिदंग पोखान मोइन लौती वे कबे से।

साथ रहे तू मेरे, सनम पूरी और जुचो बेनी की आवाजों में हमने सुना। हम और आप जुड़े हैं एफएम जॉय पर, आपके साथ जुड़ी है आरजे ओमते और ये आखिरी गाना होने वाला है आप सभी के लिए जो इस वक्त हमारे साथ लाइव पर जुड़े हैं। हमदर्द एक विलन से अरिजीत सिंह की आवाज पे हम सुनेंगे और इसी के साथ मैं आरजे ओमते आपसे इजाजत चाहूंगी, वापस मैं आपसे जुड़ूंगी बहुत जल्द, बहुत जल्द 10 बजे, ठीक 10 बजे। और दर सो महान कर उनकी दो ना लास्ट सेगमेंट ओ चुआन। फिलहाल आखिरी गाना हम सुनेंगे हमदर्द एक विलेन से।

हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एफएम जॉय पर। आपके साथ जुड़ी है आज है ओमते समय हो रहा है हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10 बजे, और ये सिलसिला जारी रहेगा 10:30 बजे तक, यानी कि आज रात के लिए ये आखिरी भाग है हमारा। तो मैं अनुरोध करूंगी कि आप हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक। सबसे पहला गाना जो जिससे मैं आपका मनोरंजन करने वाली हूँ, वो है तेरी मेरी कहानी गब्बर इज बैक मूवी से, जो कि अक्षय कुमार और करीना कपूर पर फिल्मा गया था। अरिजीत सिंह के दिल को छू लेने वाली आवाज में हम इस गाने को सुनेंगे, तेरी मेरी कहानी।

तेरी मेरी कहानी गब्बर इस बैग से, आई होप आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। अगले गाने की ओर बढ़ते हुए हम सुनेंगे ये एक और खूबसूरत गाना, जो कि है सुनिधि चौहान की आवाज में दरखास्त। और ठीक इसके बाद हम सुनेंगे तुम मिले मूवी का टाइटल ट्रैक। फिलहाल सुनते हैं सुनिधि चौहान की आवाज में दरखास्त।

दोस्तों, ये था दरखास्त और अगला गाना सुनने से पहले जोनो इस बॉय का मैसेज है आर जो तेखलांग तकिन होंगला ड्यूटी रेवत लाई हो को फिल्म खोरला नेक्स्ट खाई तान रंती ने बहुत बहुत शुक्रिया कलोम छेन लुत्तुक ओ इनमी दू सकना हियान तुम बोतो ये तक्खा नहीं लो मुदोन ने ओ मैं रोचु टॉप थेंग कमी लो थेन पुई लचु कदुआ ओ अगला गाना हम सुनेंगे तुम मिले मूवी का टाइटल ट्रैक।

हमोराब जुड़े हैं एफएम ज़ोई पर, आपके साथ जुड़ी है आरजे उम्दे। आधा समय हमारा निकल चुका है, कुछ और गाने हम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले जेल जामा का मैसेज है। इन्होंने लिखा है आरजे उम्दे इस सेगमेंट टॉप करो नंग मन शाह में इवान वान ने लल्लोल तक एम ओ कवान ने खूब में नितिन खान एफ बी लाइफ कथली उजो माशिद खान रो खोल ना वांगिन मुंदंगा मुंदंग कल लुक अंगाई लोमले नेक्स्ट सॉन्ग का उमिंगा थुआम पुईता नो अनि ही एफ एम जो ओ ngai थपे एम एम एस एम एस थोन पे सी लवांग ची खान या क्लोंग तकिन हवांग से और दिनी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जिले जामा अनि एस एम एस थोन खेर ngai लाओ आलो ngai थत तुई एम एम लो ngai थपे एम एम रेगुलर ये hi kan ga em em mini mo chung zi nga umi nga hi trump pu yemi umi nga hi tel ni tika cha kan lom tak z z ani agla gana aapke liye aap sabhi ke liye jo is waqt hamare sath jude hain aur hum sunenge musu musu hasi deu malai lai।

ये था शान की आवाज में मुसु मुसु हासी देव मलाईलाई प्यार में कभी कभी मूवी से। आपके मैसेजेस को देख के लग रहा है दोस्तों आप ज्यादातर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, आप सो चुके हैं या फिर हमें मैसेजेस भेजने में कंजूसी कर रहे हैं। कुछ भी हो, अगला गाना आप सभी के लिए और हम सुनेंगे कबीरा मांझा, रेखा भारद्वाज और तोशी रैना की आवाजों में।

ये था दोस्तों, ये जवानी है दीवानी मूवी से है कबीरा मानजा, रेखा भारद्वाज और तोची रैना की आवाजों में। अगला गाना जो कि इस भाग का आखिरी गाना होगा, तुम हो, रॉकस्टार मूवी से मोहित चौहान की आवाज में हम सुनने वाले हैं। इसी के साथ मैं आरजे उमते आप सभी से इजाजत चाहूंगी। वापस मैं आपसे जुड़ूंगी अगले हफ्ते सोमवार की रात। तब तक आप स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा और जुड़े रहिएगा FM Zoy के साथ। आप सभी को आज ओमती की तरफ से गुड नाइट।